0: ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ
2: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाहर हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ। 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au। सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवरस्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
3: तू तो यार होना ही नहीं चाहिए।
4: मैं तो कहना है एतवार भी स्कूल लगन, मसला तो मौका मिलता रीलां तो बचन दा।
5: अरे बोलो पप्पू दे पापा।
6: इस 8 मई नु सिनेमा विच रिलीज होने जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, वेखण जरूर आयो।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
3: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
4: Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming on big screens on May 22nd.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

ग्रोवर्स, वीड ग्रोवर्स, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: KBCO Films leke aaye action, emotion ate full on entertainment. Punjabi feature film Shera.
1: 5 saal baad mudiyan Shera. Te mudiyan vi kede haath ch.
2: Starring Parmesh Verma, Sonal Chauhan, Yograj Singh, Manav Vij ate hor vi uge kalakar.
3: Main utthon vi mud ke jithon koi nahi mud ke honga.
0: Written and directed by Savio Sandhu. Produced by Anmol Sahni.
2: Hun vekhna na bhullo 15 mai ton tuhade nedle cinema gharan vich Shera.
4: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है, और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
5: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
6: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावना को समझो।
7: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुन रहे होना चाहिए। हांजी हांजी, कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना,
3: डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310, डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
4: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM।

This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए, लेकिन

0: यो हाँ जी 1674 है।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्सटंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: Here we go again. Authentic, original and better than our

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
2: Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming on big screens on May 22nd.
3: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
4: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: हाँ भाई सिडनी वालों, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au। सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुन धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
4: यू आर लिसनिंग
0: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
4: रेडियो हांजी, स्टे ट्यून्ड।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
3: रेडियो हांजी 1674 AM।
4: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो।
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच वी स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310 डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक हुने डायल करो 0406 966 668 और विजिट shipglobal.au।

0: CEO Films leke aaye action, emotion ate full on entertainment. Punjabi feature film Shera.
1: 5 saal baad mudiya Shera, te mudiya vi kede haath ta chhe.
2: Starring Parmesh Verma, Sonal Chauhan, Yogra Singh, Manav Vij ate hor vi uge kalakar.
3: Main utthon vi mud ke jithon koi nahi mud ke aunga.
0: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni.
2: Hun vekhna na bhullyo 15 mai ton tuhade nedle cinema ghar vich Shera.
4: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
5: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में.

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
1: जुगाड़
2: नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बांसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
4: रेडियो हां जी 16744।

0: धने जी, क्या तू साला लक पाए हो यार।
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चले आए
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: JBCO Films लेके आए ने एक्शन इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट पंजाबी फीचर फिल्म शेरा।
4: 5 साल बाद मुड़िया शेरे ते मुड़िया भी केड़े हाथ ता।
5: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
6: मैं उठों भी मुड़ के जितों कोई नहीं मुड़ के होगा।
3: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सैवियो संधू, प्रोड्यूस बाय अनमोल साहनी।
5: हुन वेखना ना भुलियो 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा।
7: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji.

0: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
3: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो।
4: सत श्री अकाल, इस बॉय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: You are listening.
1: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
1: Radio Haji
0: Stay tuned.
3: जवाका दी एक्टिंग है कमाल पवेगा हुण धमाल
4: अक्षरा
5: ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलनगे
5: आहो जी आहो
4: अक्षर ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: JBCO Films leke aaye action, emotion ate full on entertainment. Punjabi feature film Shera.
1: 5 saal baad mudiyan Shere, te mudiyan vi kede haath ch.
2: Starring Parmesh Verma, Sonal Chauhan, Yograj Singh, Manav Vij ate hor vi ugge kalakar.
3: Main utthon vi mud ke jithon koi nahi mud ke aunga.
0: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni.
2: Hun vekhna na bhullyo 15 mai ton tuhade nedle cinema ghara vich Shera.
4: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है, और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
5: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में.
6: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. सुनते रहिए रेडियो. हां जी,
7: बल्ले बल्ले बल्ले
6: बल्ले बल्ले बल्ले.

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलनगे।
2: आहो जी आहो।
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: creation is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेरी बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
4: Chill out.

0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
2: Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming on big screens on May 22nd.
3: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
4: Pandey ji, kya tu sala luck paaye ho yaar? Ek dost ke saath pakde gaye aur dusri dost chhudane chali hai. Aur ye teesri dost hi hai na?
0: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में। हाँ जी हाँ।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
1: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ। 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au। सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरिस पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन से मिलेंगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
3: तू तो यार होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहना है एतवार भी स्कूल लगन, मसला तो मौका मिलता रीलां तो बचन दा।
4: अरे बोलो पप्पू दे पापा।
2: इस 8 मई नु सिनेमा विच रिलीज होण जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, वेखण जरूर आयो।
5: सतिकाल मैं हां जी शेर गिल ते तुसी सुन रहे हो रेडियो हां जी 1674 AM।

0: और क्यों एक मूड ते आके मैनूं लगदा है कि तेरी होंद नूं बयानण लई जिवें हमेशा ही कोई कसर बाकी रह जांदी है। मैं तैनूं दुनिया दे नज़ारियां नाल मेल मेल के वेखण दी गलती कर बैठा, पर तू तां अपने आप विच मौलिक अलहदा ते कुदरत दी शाना दी सिरजना है।
1: You are listening.
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Hanji. Stay tuned.

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: गणेश जी क्या तू साला लक पाए हो यार,
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: JBCO Films लेके आए में एक्शन इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट पंजाबी फीचर फिल्म शेरा।
4: 5 साल बाद मुड़िया शेरे ते मुड़िया भी केड़े हालात च।
5: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
6: मैं उठो भी मुड़ के जत्थों कोई नहीं मुड़ के होगा।
3: रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सैवियो संधू, प्रोड्यूस बाय अनमोल साहनी।
5: हुन वेखना ना भुलियो 15 मई तो हाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा।

0: सिडनी वाले तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310, डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
1: नीरू
0: बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
3: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
2: स्कूल तो यार होना ही नहीं चाहिए, है तो कहना है एतवार भी स्कूल लगन मसला दा मौका मिलता रीलां तो बचन दा।
3: अरे बोलो पप्पू दे पापा,
1: इस 8 महीनों सिनेमा विच रिलीज होने जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, देखण जरूर आयो।
4: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।
6: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल immigration.com.au।
3: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
4: हां जी रेडियो

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: You are listening
3: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
3: Radio Haji
2: Stay tuned।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हाँ जी हाँ जी
1: रेडियो हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: ओ मुछ ते मरूद है ते अखा जे बरूद है, टॉप दियो गन है ते टॉप दियो रन है, रीवन कटाउंदी जेड़ी वैरियां दी कुटदा, गड्डियां च लदी यारां बेलियां दी जान है।

0: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
1: लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
2: Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming on big screens on May 22nd.
3: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
4: Pandey ji, क्या तू साला लक पाए हो यार? एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
0: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
5: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाले ले लो।
6: और जो हुकम मेरी सरकार।
5: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाले जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच,
5: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
6: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टन विच वी तुहाड़ी सेवा विच।
5: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310, डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
7: यार तू इतने इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
8: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
7: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
8: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाले ले लो।
6: और जो हुकम मेरी सरकार।
5: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाले जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच,
5: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
6: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टन विच वी तुहाड़ी सेवा विच।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना,
4: डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 1 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
5: पांडे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
6: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
7: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
8: JBCO Films लेके आए ने एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट पंजाबी फीचर फिल्म शेरा।
9: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हाथा च।
10: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
11: मैं उत्थों भी मुड़ के जत्थों कोई नहीं मुड़ के होगा।
8: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni।
10: हुन वेखना ना भुल्लियो 15 मई तो हाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा।

0: आवे सिडनी वाले तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
2: और जो हुकम मेरी सरकार
1: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
2: आहो जी आहो
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच

0: This station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन, विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिलवाले नहीं होते।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स।

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
2: लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
3: Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil coming on big screens on May 22nd.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
3: सत श्री अकाल, शुभ बोए बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी हाँ।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: अंत साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा हुई ते ऊंची साध की शोभा मूझते मूची
0: साध की शोभा साध बनाई नानक साध प्राप्त न पाई
1: सुख मणि सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ सत श्लोक
0: मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख एक बिन कोए नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: दम ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख
1: ब्रह्म ज्ञानी कह दिस समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
0: ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जेक ज्यों बसदा को खोदै को चंदन लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाव नानक जो पावक का सहि स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश जैसे तार ऊपर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही बिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी उचते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रवाप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दिस अमृत बरसी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता
1: ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी कह होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग
0: ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सब जगत ब्रह्म ज्ञानी अहबो त्याग
0: ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख साहि निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कविता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभाव ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दस गुण भागी पाई ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अधाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कौन बखाना ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुकुट जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
0: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ अठ श्लोक
0: उतार है जो अंतर नाम सर्व मैं पेख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक हो अपारस सगल निस्तार है सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस मन मैं पीत निरंजन दर्श
0: पर तेरे रूप न पेख है नेत्र साध की टहल संत संग हेत
1: न सुने काहु की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा
0: गुर प्रसाद बिख्या पर हर है मन की बासना मन ते टर है
1: इंद्री जित पाई दोख से रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस
0: वैष्णो सोजे सुपर सुपर सन विष्णु की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म करत हुए ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल तर्म
0: काहु फल की इच्छा नहीं बाछा है केवल भात कीर्तन संग राचा है
1: मंत अनंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानक हो वैष्णो परमगत पावे
1: भगवती भगवान भगत का रंग सगल त्याग है दुष्ट का संग
0: मंते बिनसै सगला भरम कर पूजा सगल पार ब्रह्म
1: सात संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नितनीत मंता नरपै विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
0: सुपंडित जो मन पर बुद्ध है राम नाम आत्म में सुध है
1: राम नाम सारस पीवे उस पंडित की उपदेश जग जीवे
0: हर की कथा हृदय बसावे सुपंडित फिर जो न आवे
1: वेद प्राण सिमरत बुझे मूल सुख में जाने स्थूल
0: वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपे को नाम
0: जो जो जपे तिसकी गाथ होए साध संग पावे जन पुए
1: कर कृपा अंतर उधारे पशु प्रेत मुकुट पाथर को तारे
0: सर्व रोग औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: हो जुगत किते ना पाई है धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास
1: सात नाम तिस नदरी आया दास संत भाय तन पाया
0: सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह प्रवान
1: अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी पर है
0: सगल संग आत्मो दास ऐसी जोत नानक रामदास
1: आपकी आज्ञा तुम हितावे जीवन मुक्त सो कहावे
0: ऐसा हरकत ऐसा सोग सदा ਤਾਂ ਤੈ ਨਹੀਂ ਬਿਯੋਗ।
1: ਤੈਸਾ ਸੁਨ ਤੈਸੀ ਉਸਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਸੀ ਬਿਖਾਟੀ।
0: ਤੈਸਾ ਮਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ।

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: Om Shanti and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Happiness Index को जब देखते हैं आप समझ में आ रहा है कि वो कैसे ऊपर नीचे हो रहा था. ये भी समझ लिया हमने कि टेक्निक क्या है, कैसे उसे स्टेबल रख पाएंगे. बिलीफ सिस्टम्स को बदलने की बात थी, वो भी बहुत कुछ समझा. आगे और बढ़ाते हैं अपनी बात को. और जब हम बात कर रहे थे कि ट्रैफिक कंट्रोल, हर एक घंटे बाद कुछ देर अपने अंदर जो बच्चा है जो इधर उधर कहीं भाग जाता है उसे पूछे वो ठीक है, उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई या उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बरकरार है. तो आज बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं. हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सत्य शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: आपका हैप्पीनेस इंडेक्स तो हर बार ही स्टेबल होता है, बट बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं. आपसे शुरू करते हैं, कभी आपके साथ भी ऊपर नीचे होता है?
1: ऑफ कोर्स, एवरी डे आई थिंक कुछ ना कुछ बातें तो आती हैं जैसे. लेकिन अब क्या है, सिर्फ इजियर है. पहले मुश्किल था एंड दैट्स द जर्नी कि वो डे बाय डे इजियर होता जाएगा. अवेयरनेस ऐसी चीज नहीं आज सोचा आज हो गया. बिकॉज वट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर ये डीप चीजें हैं और हमारे बहुत डीप रूटेड संस्कार हैं जिनको हम ऊपर ऊपर से नहीं ठीक कर सकते. कई बार ऐसा लगता ठीक हो गया, यू नो यू से ओके ये प्रॉब्लम थी मेरी सोचने के तरीके में, मैंने एक दूसरी थॉट क्रिएट की ठीक हो गया. लेकिन आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज इट हैज क्रीप्ड अप अगेन. ये कहां से ये वैसे वाली थॉट्स फिर से आ रही है. इट्स जस्ट दैट नाउ फोकस इज वेरी क्लियर. उसमें कंफ्यूजन कभी नहीं होता कि दूसरा ठीक होगा तब मेरा मूड ठीक हो जाएगा. आई एम नॉट वेटिंग फॉर दैट. मुझे ये पता है कि ये मैं खुद क्रिएट कर रही हूं और जितना जल्दी डिसाइड करूंगी तो उतना जल्दी उसको ठीक कर लूंगी. सो आई ऑलवेज जस्ट हैव टू स्टॉप एंड टेल माई सेल्फ कब तक का प्रोग्राम है इस हालत में रहने का. थिंक अबाउट इट, कितनी देर तुम्हें इस तरह से कंफ्यूजन में, दर्द में, हर्ट में रहना. एंड देन यू नो दैट क्वेश्चन इटसेल्फ सेज ओके ओके फाइन, आई नो आई वाज गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक. एंड यू स्टॉप एंड यू से ध्यान रखना शुरू कर दो. जैसे हमने पहले भी देखा कि लेट गो करना है. जो पकड़ा हुआ है उनको जल्दी जल्दी छोड़ते जाओ. जितना देर पकड़ के रखते हैं उतना फिर छोड़ना मुश्किल होता है. इसी तरह एक और चीज का जो हम ध्यान रख सकते हैं एंड दैट इज लेट बी. लेट पीपल बी द वे दे आर. अगर आप एक दिन चेक करो या एक घंटा भी चेक करो, हमारा माइंड बहुत ज्यादा औरों के जीवन में इंटरफेयर करता है. मतलब कोई इसके पास कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मन को एक आदत पड़ी हुई है औरों के जीवन के बारे में सोचने की. तो लेट एवरीवन, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं, लेट देम बी एंड यू नो स्टॉप इंटरफियरिंग इन पीपल्स लाइव्स. उन्होंने मांगा नहीं है हमसे हमारा ओपिनियन. और ये ओपिनियन जरूरी नहीं हम शब्दों में दे रहे होते हैं, हम अंदर ही चल रहे होते हैं. राइट फ्रॉम अ पर्सन, यू नो यू सी अ पर्सन एंटरिंग, हम उनकी लुक्स पर क्रिटिकल हो रहे हैं, हम उनकी ड्रेसिंग सेंस पर क्रिटिकल हो रहे हैं,
0: उनके बिहेवियर पर, यू नो लाइक कैसे वो बात कर रहे हैं, हर चीज पे हम जो है वो
1: कॉन्स्टेंटली. तो क्या होता, एक एक मोमेंट, जैसे हमने देखा इट्स वन मोमेंट, माई लाइफ इज अ सीरीज ऑफ मिनट्स, एक एक मिनट ऐसे पास हो रहा है. अब जितने मोमेंट्स हम औरों के बारे में सोच रहे हैं उतनी देर हम अपने बारे में
0: नहीं सोच रहे हैं
1: और हम फिर उनके बारे में सोच रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. एंड वेन एवर वी थिंक और डू समथिंग विच इज नॉट इन माई कंट्रोल, वो मेरी एनर्जी को वेस्ट करता है. लेट से कि मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा ब्रिक है, अभी मेरे में उतनी ताकत नहीं है उसको तोड़ने की, लेकिन मैं उसको तोड़ने की कोशिश करूं तो वो टूटेगा नहीं. आधा घंटा, एक घंटा ट्राई किया, लेकिन आफ्टर दैट हाउ विल आई फील, मेरे को बहुत थका हुआ फील होगा. क्यों? क्योंकि मैंने एनर्जी बहुत लगाई वो काम करने में जो कि मेरे से हो नहीं सकता. तो दिस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये एक एक थॉट हमारी एनर्जी कंज्यूम करता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी. तो इसके लिए हम हमेशा यही याद रखते कि सारा दिन ड्रामा चल रहा है, हर एक एक्टर अपना अपना रोल प्ले कर रहा है. लेट्स नॉट राइट अदर पीपल स्क्रिप्ट. ये जो हम स्क्रिप्ट सारा दिन औरों की लिख रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इनको ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए था, ये भी कोई बात करने का तरीका है, थोड़ा सा तो पोलाइटली बोलते, ये नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है इनके अंदर. वी आर राइटिंग देयर स्क्रिप्ट, दे आर फाइन द वे दे आर. लेकिन हम उनकी स्क्रिप्ट लिखते लिखते हम ये सोचना भूल जाते मुझे क्या बोलना चाहिए था। अब ये लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप हर एक सीन में देखेंगे, इवन अ सिंपल थिंग लाइक सपोज बोथ ऑफ अस हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हम किसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन बढ़ते बढ़ते एक आर्ग्यूमेंट बनती जा रही है, लेकिन डिस्कस करते करते मेरा ज्यादा ध्यान किस पर होता है कि आप क्या बोल रहे हो, आपको क्या बोलना चाहिए था, आपको क्या नहीं बोलना चाहिए था, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। तो इट्स जस्ट लाइक अ ड्रामा। आज अगर हम थिएटर देखने जाए तो ड्रामा स्मूथली परफॉर्म तब होगा अगर हर एक एक्टर
0: अपने पे काम कर
1: रहा है, अपने पर काम कर रहा है। एक बार हम एक थिएटर परफॉर्मेंस देख रहे थे इन विच इट वॉज अ मोनो एक्टिंग, यू नो, एक ही था एक्टर एंड दैट वन एक्टर वॉज प्लेइंग लॉट ऑफ रोल्स। इट वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस, उनके बहुत डायलॉग्स थे उनको जो बोलना था, एंड उन्होंने वो प्ले मतलब अनगिनत बार वो कर चुके थे। इट वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर परफॉर्मेंस, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल। अब इस चीज में अगर आप देखें तो उस एक्टर को वो डायलॉग्स तो बाय हार्ट याद होंगे, मतलब बिना एफर्ट के भी वो बोल सकते हैं। और उस दिन क्या हुआ, जैसे ही वो परफॉर्म कर रहे थे तो इन द मिडल ऑफ द प्ले किसी का मोबाइल बज गया, यू नो, एंड दैट एक्टर वेंट ब्लैंक। ही जस्ट स्टूड, ही जस्ट डिडंट नो कि मुझे नेक्स्ट क्या बोलना है। और उनको ऐसा दो मिनट लगा, उन्होंने फिर जैसे यू नो ही जस्ट स्टूड स्टिल साइलेंट। टू मिनट्स के बाद ही सेड सॉरी एंड देन ही सेड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कीप योर मोबाइल्स ऑन साइलेंट एंड देन ही स्टार्टेड हिज परफॉर्मेंस। तो वो देखते हुए जस्ट द थॉट व्हिच केम टू मी इज कि एक्टर अपने रोल पर और अपने डायलॉग्स पर इतना कॉन्सेंट्रेटेड है फुल्ली कि एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन भी और वो अपने रोल और अपना डायलॉग भूल गया। हम सारा दिन अपने जीवन कैसे जी रहे हैं? हम तो अपने माइंड को हर तरफ डिस्ट्रैक्टेड होने दे रहे हैं, हमें अपना रोल और अपना डायलॉग
0: पता ही नहीं है ना,
1: से ध्यान में रहने वाला
0: है, अवेयर ही नहीं है बिल्कुल भी, यू नो,
1: कैसे ध्यान में रहेगा। एंड देन हाउ विल वी गिव आवर बेस्ट परफॉर्मेंस टू एवरी रोल दैट वी आर प्लेइंग, बिकॉज हम तो अपने रोल में है ही नहीं। See if I'm here, लेकिन मैं अपने बजाय औरों के रोल्स औरों के डायलॉग्स के बारे में सोच रही हूँ। आई एम नॉट देयर इन माई रोल, हाउ विल माई लाइफ बी। एंड फिर सब कुछ करते हुए भी हम कह रहे हैं वो अनुभव नहीं हो रहा, वो जीवन में जो सक्सेस चाहिए वो कैसे सक्सेस होगी। आज एक एक्टर को क्यों अच्छा लगता है परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि वो अपने रोल में अच्छी तरह से इन्वॉल्व था। हम किसी भी थिएटर एक्टर को जाकर पूछ सकते हैं, अगर 2 आवर्स के प्ले में वो सिर्फ औरों के रोल के बारे में सोच रहे थे, हाउ डिड यू एंजॉय योर परफॉर्मेंस?
0: नहीं होता, कभी भी नहीं होता।
1: यू आर अ थिएटर एक्टर, तो आप एक दिन वो करके देखो। एक तो आप बीच में ही अटक जाओगे आई थिंक, इन द मिडल
0: ऑफ। जैसे हम दूसरे को करेक्ट करने लगते हैं ना, खुद का अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है ओ यस
1: खत्म हो जाए।
0: थिएटर में भी हर परफॉर्मेंस से पहले 5 मिनट का साइलेंस रखते हैं, 5 मिनट का साइलेंस रखते हैं। उसके बाद यू नो 1 आवर बिफोर द शो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, वी जस्ट गो इनटू साइलेंस। हम उसके बाद बात नहीं करते, एक पूरा मेडिटेट करने के बाद 5 मिनट तक अपने साथ, देन एक्टर रिमेन्स with oneself.
1: अब जो कुछ, सी आई डिडंट नो दिस, बट अगर वो 5 मिनट का साइलेंस करते हैं वो क्या प्रयास कर रहे हैं कि सारी डिस्ट्रैक्शन से एक्सटर्नल भी इंटरनल भी हर तरफ से हटकर अब आ जाओ सिर्फ और सिर्फ अपने रोल के ऊपर, क्योंकि ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। एंड हम अपनी पूरी परफॉर्मेंस अपना पूरा प्ले कर रहे हैं विदाउट बींग इन द सीन, एंड तब हमें अपने इस प्ले में उतना मजा नहीं आ रहा है जितना मजा आना चाहिए, क्योंकि हम तो अपना रोल प्ले ही नहीं कर रहे। वी आर कॉन्स्टेंटली प्लेइंग समबडी एल्सेस रोल, एंड कहीं ना कहीं शायद हमने अपना रोल ही ये बना लिया कि औरों के रोल के अंदर
0: हमने अपनी अपनी बात डालनी है।
1: अब ये जो हम औरों की स्क्रिप्ट सारा दिन लिखने की कोशिश करते रहते, इसके पीछे कौन सा बिलीफ सिस्टम होगा? व्हाट विल बी द बिलीफ?
0: ही इज रॉन्ग, द अदर पर्सन डजंट नो, आई नो बेटर।
1: सो वन, I can control the other person. ये एक deep belief.
0: Because I'm trying to change, you know, I'm trying to do things better for him.
1: लेकिन ये तो मेरा belief है ना कि आप मेरे control में हो, मैं अगर आपको बोलूंगी
0: तो आप करोगे,
1: आप करोगे। So this is a very very deep belief कि लोग मेरे control में हैं।
0: करें, करना चाहिए उन्हें,
1: लेकिन जब हम बोल रहे हैं अब उनको जब हम रोक रहे हैं, टोक रहे हैं या उनके प्रति जजमेंटल हो रहे हैं, थॉट तो यही है ना कि ये सारी दुनिया
0: मेरे कंट्रोल में
1: है और ये सारी दुनिया मेरे चाहने के अनुसार चलनी चाहिए. दिस इज अ वेरी डीप बिलीफ सिस्टम. द वर्ल्ड शुड गो अकॉर्डिंग टू my likes, my desires, my expectations, and also second belief system, my happiness is dependent on their behaving the way
0: I want
1: them to behave. तो इसलिए अपनी ही खुशी के लिए है, सारा कुछ खुशी के लिए है, अपनी खुशी के लिए औरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते और उस प्रोसेस में अंदर ही अंदर और दर्द क्रिएट करते जाते. सो एक दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं. जस्ट राइटिंग,
0: किसी कॉर्पोरेट बॉस के बारे में बात नहीं कर रहे थे हम. आप अपनी जीती हुई, चाहे आप माँ हैं, चाहे आप सबॉर्डिनेट भी हैं,
1: जैसे माँ आपने कहा, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ये कंट्रोल का फीलिंग बहुत ज्यादा आता है. इवन एक पेरेंट को किस कॉन्शियसनेस से अपने बच्चों को बड़ा करना चाहिए कि ये आत्माएं हैं जो मेरे घर में आए हैं. मेरा रोल है एक तो इनको फिजिकल प्रोटेक्शन देना, इंटेलेक्चुअल जो भी इनकी ग्रोथ कराना, बाकी मेरा रोल है इनको वो एक एनवायरमेंट देना, इनको वो पालना देना, एंड देन लेट देम टेक देयर लाइफ द वे दे वांट, नॉट लेट देम डू एंड बिकम व्हाट आई वांट. यू नो लॉट ऑफ अस आर ट्राइंग टू मेक आवर चिल्ड्रन what we want. It's not, yes, we are there to guide, but then we are there to guide.
0: तो कितनी बार तो कहते हैं कि अगर तुमने मेरा ये सपना पूरा नहीं किया तो फिर मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ. अगेन वी नीड टू चेक, एक्चुअली
1: इसको चेक करने की चीज है कि उस आत्मा की अपनी जर्नी है, अपने लाइक्स डिसलाइक्स डिजायर्स जो भी सारा कुछ है, अपनी क्रिएटिविटी है. हम सोच रहे हैं वो हमारे थॉट पैटर्न से अगर अपना रोल प्ले करे तो उसकी अपनी क्रिएटिविटी दब जाएगी एंड दैट सोल विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस, क्योंकि वो अपने थॉट से भी नहीं चल रहा और मेरे थॉट से तो वो कर ही नहीं सकता. सो इवन एज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमें एक गाइड की तरह बनना चाहिए ना, एक फैसिलिटेटर की तरह जो हमेशा है, ऑलवेज अवेलेबल, बट टू हेल्प मी, टू गाइड मी, नॉट टू कंट्रोल में. तो उससे वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत हेल्दी हो जाएगा. लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हम हमेशा उनको रोकते हर चीज पे ताकि उनकी लाइफ हमेशा स्मूथ चले. हम कितना भी ट्राई करें उनके अप्स एंड डाउन्स तो आने ही वाले हैं, बट अगर हम उनको गाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते, तो वो अपने अप्स एंड डाउन्स को तो
0: हैंडल कर
1: खुद ही फेस कर लेंगे. वी आर थिंकिंग कि हम बच्चों को इतना राइट राइट राइट दिशा पर ले जाएं कि इनके जीवन में कभी कुछ प्रॉब्लम ही ना आए. दैट्स नॉट द वे टू लुक एट इट. इट हैज टू बी हम उनको इतना स्ट्रांग बना दें ताकि जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी चैलेंज आएगा, दे विल बी एबल टू जस्ट क्रॉस इट. एंड दैट विल ओनली हैपन इफ आई फैसिलिटेट. यू नो एक मेंटर जैसे होता है, एक गाइड जैसे होता है, नॉट अ कंट्रोलर. तो हम पेरेंट्स कंट्रोलिंग वाली जो एटीट्यूड लेकर चलते उससे हम उसकी क्रिएटिविटी को दबा देते हैं. तो एक दिन ट्राई करेंगे स्क्रिप्ट नहीं लिखने के लिए औरों की,
0: और इसके लिए खुद अवेयर होना पड़ेगा. सी, अब जब हमने अपने ऊपर बात करनी शुरू की है, अपनी हर सोच को देखना शुरू किया है, तब रियलाइजेशन ये हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं. आई थिंक समवेयर हमें ये फीलिंग कि मेरा कंट्रोल है दूसरे के ऊपर.
1: हाँ, सी दैट फीलिंग कि मेरा, अगर हमें किसी को भी बताना भी है, इट शुड बी लाइक दिस इज माय ओपिनियन, यू नो, यू कैन टेक इट इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू हैव टू डू इट दिस वे एंड देन एक्सपेक्टिंग कि वो करेंगे ही वैसा एंड देन गेटिंग एंग्री
0: जब
1: वो नहीं कर पाते हैं उस तरह से. तो उससे फिर क्या हो जाता है, उनको राइट और रॉन्ग सिखाने के प्रोसेस में हम जब हर्ट हो जाते तो हमारा रोल क्या हो गया. मैंने तो
0: अपने रोल तो काम किया ही नहीं,
1: अपना रोल. अगर मुझे आज आपको देखकर गुस्सा आ गया क्योंकि आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, लेट्स से यू हैव कमिटेड अ क्राइम एंड मुझे गुस्सा आ गया, तो आपने तो जो भी गलत किया सो किया, वो आपके रोल का. मैंने जो गुस्सा किया, मैंने जो हर्ट क्रिएट किया, तो मेरा रोल भी तो खराब हो गया ना. तो पहले मेरे अपने रोल पर मुझे ध्यान देना, देन आई कैन प्रोबेबली शेयर विद यू और गाइड यू. बट आपके रॉन्ग को क्रिटिसाइज करने के लिए मैंने अपने भी रोल को खराब कर दिया, तो हर एक एक्टर का रोल
0: खराब होता गया ना फिर. हाँ, तभी तो ड्रामा खराब होने लग गया. अच्छा खासा जो है प्ले चल रहा है, उसको अगर हम एक मिनट में खराब
1: एक नॉर्मल प्ले में भी अगर देखते थिएटर पे, लेट्स से हम अभी उस प्ले में हैं एंड मुझे अपनी लाइंस भूल गई तो जो बाकी एक्टर्स हैं स्टेज पर उनका क्या रोल होता है?
0: वो कभी भी पता नहीं चलने देते किसी को भी कैसा हुआ, इतना फटाफट डिजाइन कर लिया जाता
1: है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने ही रोल पर और अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करते ताकि उनके रोल और उनके डायलॉग से मुझे वो क्यों मिल जाएगा कि where was I making a mistake? They don't stop and tell me the lines. They don't spoil the harmony of the drama. You see? तो similarly, अगर कोई मेरे आसपास कुछ गलत कर रहा है, गलत डायलॉग बोल रहा है, according to me, गलत डायलॉग, गलत लाइन, सब कुछ, I can just take care more on my role. You know? और भी ज्यादा ध्यान रखे कि I'll not get hurt, I'll remain stable. So that might give the cue to the other person.
0: कि ओहो मैं भटक गया था, मेरी लाइन तो ये थी।
1: Yes. लेकिन जहाँ वो भी लाइन्स अपनी खराब कर दी, मैंने भी अपनी लाइन्स खराब कर दी, एंड देन ग्रेजुअली हम दोनों ने अपनी लाइन्स को, डायलॉग को पूरी तरह से इतना मेस्ड अप कर दिया, देन दैट सीन बिकम्स वेरी वेरी अनप्लेसेंट, एंड फिर वो ड्रामा हमें पसंद नहीं आता, फिर हम कहते ये जीवन ऐसा क्यों है। तो ये वाली एक पॉइंट कि लेट एवरीवन बी, ये हमें यहाँ सफाई रखने में बहुत मदद करेगी, क्योंकि हम बहुत एनर्जी, और देखो ना हम कितने लोगों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, एक दो की लिख रहे हों, चार की लिख रहे हों तो भी ठीक है, हम सारा दिन में कितने एक्टर्स की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करते।
0: उसे ऐसा कहना चाहिए था। How many times he say that? He should have said this.
1: Yeah. Is this the way to speak?
0: He should have done this.
1: We don't even say he could have said this. No. He should have said this. Means
0: to this is what, you know, this is how the world should be.
1: Yeah. Why? Because this is the way I would like the world to be. तो इसको एक होमवर्क के रूप से देखें कि आज एक दिन ट्राई करें, how do you feel जब आप औरों की स्क्रिप्ट में इंटरफेयर न करके,
0: लोगों को कंट्रोल एक्चुअली करना बंद कर दें, इवैल्यूएट करना बंद कर दें। अमेजिंग, यू नो हाउ वी डू।
1: और ये जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है, इसका हमें बहुत, जैसे आपने आज शुरू में भी कहा ना कि आपका ऊपर नीचे होता है कि नहीं, आई हैव सीन सबसे ज्यादा कारण ऊपर नीचे होने का यही एक होता, जैसे ही मेरा फोकस जाता है इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा नहीं, देयर इट्स गॉन, दैट स्टेबिलिटी है। मॉर्निंग में उठे, मेडिटेशन किया, इट्स वेरी नाइस, यू आर एब्सोल्युटली लाइक दिस, एंड देन द माइंड गोज इनटू इनको क्या बोलना चाहिए था, इनको क्या करना चाहिए था, एंड देयर यू गो। अगर आप वो एक चीज पर वर्क कर लो, आपका माइंड ऐसे रहेगा, देयर इज नथिंग एल्स आउट देयर इन द वर्ल्ड जिससे कोई भी डिस्टर्बेंस होने वाली है, ये हम जब हो जाते हैं। सो राइट नाउ आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू लुक इन दिस, एंड आई कैन जस्ट से इट्स इजी बट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अटेंशन, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्लिप ऑफ हो जाता है। ये ऐसा संस्कार है कि यू नो वी ट्राई टू रिमाइंड आवरसेल्फ, एंड देन बिफोर वी आर अवेयर 10 मिनट बाद आई सडनली सी ओ माय माइंड इज अगेन थिंकिंग अबाउट समवन एल्स, एंड अगेन वी किसी के बारे में जजमेंट पास कर रहा है, व्हाट अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, कम बैक। लेकिन वो करते करते आई कैन सी कि वो परसेंटेज कम होती जा रही है, एटलीस्ट मेरी लिस्ट कम होती जा रही है कितने लोगों के बारे में आई एम थिंकिंग, एंड नाउ दैट लिस्ट इज कमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, एंड वी नीड टू फिनिश इट, क्योंकि कोई भी नहीं है जो मेरे कंट्रोल में है। पहले तो क्या हो रहा था, गाड़ी चलाते हुए भी हर एक ड्राइवर के ऊपर भी कमेंट पास हो रहा था, कैसे चला रहे हैं, लाइन में नहीं खड़े, टोल पर खड़े हैं, गलत साइड से ओवरटेक कर रहे हैं, जस्ट थिंकिंग अबाउट एवरीवन, उन्होंने तो फिर भी ओवरटेक करना है, लाइन को तोड़ देते हैं, टैग की लाइन में कैश भर, ओ देयर इज सो मच टू गेट डिस्टर्ब्ड अबाउट, यू नो इफ यू अलाउ योरसेल्फ टू गेट सक्ड आउट, there is just too much happening
0: I think
1: around.
0: for some time we need to really focus on ourselves actually, and we should become little selfish.
1: I keep on saying this
0: because I understand, you know, hum jaisa aapne kaha bahar continuous observe karte rehte hain, aur wo hum observe, aur hum kehte hain hum to neutral observer hai, lekin hum kitni sari cheeze un par
1: neutral honge to yahan disturbance nahi hoga na, agar aap detached hokar dekho, abhi bhi if I'm standing in the traffic jam I can see people where they are making their mistakes, they're overtaking wrong, but
0: it's not affecting you,
1: create anything here, अभी भी दिख तो रहा ना, आंखें कान बंद थोड़ी है कुछ भी, लेकिन यहां कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, दिस बिकम्स एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्ट करें कि हर एक अपना अपना रोल अपने अपने अनुसार प्ले कर रहा है, एंड दे हैव द राइट टू डू इट, एवरीवन। मेरे अंदर बहुत कुछ है अभी, विच पीपल मस्ट बी सिटिंग एंड थिंकिंग दैट आई एम रॉन्ग, बट आई एम फीलिंग दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग इज राइट, तो इसी तरह सामने वाला भी जो कुछ भी कर रहा होगा, इवन अगर वो रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहा है, लाइन तोड़ रहा है, उसके पास उस टाइम कुछ ना कुछ लॉजिक होगा उसके लिए। और जैसे ही हम ये लेट भी करना शुरू करते, एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन को, लोगों को, कि हर एक अपने अनुसार अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, एंड एवरीबडी इज एक्यूरेट इन द रोल दे आर प्लेइंग। यस, इफ समबडी आस्क्स मी फॉर हेल्प, इफ समबडी वांट्स मी टू गेट इन्वॉल्व्ड इन देयर ड्रामा, यू नो, किसी का अपना कोई ड्रामा है एंड समवन सेज यू नो प्लीज गेट इन्वॉल्व्ड ताकि आप हमें हमारे ड्रामा में कुछ हेल्प करो, लेकिन उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन्वॉल्वमेंट, लेकिन नॉट उसके अंदर हम इतना घुस जाएं कि उस सीन की, उन एक्टर्स की जो इमोशन है
0: वो हमें हम करने पड़ा जाए, लेकिन वो एक्चुअली होता बहुत कम हो पाता है।
1: क्योंकि क्या होगा, जैसे आपने कहा, अगर इफ योर रोल सी यही पेरेंट के रोल है, यही बॉस का रोल है, ये टीचर का रोल है, क्योंकि हमारा रोल है किसी तरह तब कि हम औरों के ड्रामा में थोड़ा सा इन्वॉल्व्ड हैं, क्योंकि हम

0: gone wrong and to share with him what is the right way and wo kaise theek kar sakta hai, kahan wo galat ja raha hai, everything I have to do. Lekin agar maine same dard create kar liya jo bachcha hai, ya shayad main bachche se bhi zyada dard mein as a mother main chali gayi, then somewhere I'll not be able to play my role properly. Kyunki jab ek bar yahan dard create ho jata to wo clarity hi khatam ho jati ki ye kyun, kya, kaise isko theek karna.
1: लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि जब हम रोल प्ले की बात करते हैं, सोचते हैं कि बड़ा मैकेनिकल हो गया, यू नो समवेयर डीप विद इन, बिकॉज वी एंजॉयड इट सो मच, और लाइक वी थिंक अगेन ये बिलीफ सिस्टम है कि यही ऐसे ही तो जीना है, ऐसे ही मुझे रोल प्ले भी करना है अपना.
0: रोल प्ले करना है ये मैकेनिकल होने के बजाय क्रिएटिव हो जाता है. मैकेनिकल तो अभी तक चल रहे थे,
1: ऑटोमेटेड.
0: हाँ, और मैकेनिकल क्या होता है, जहां चॉइस नहीं है कि बच्चा दर्द में है तो मैकेनिकल है कि पेरेंट ने दर्द में जाना ही है. मैकेनिकल मीन्स ऑटोमेटिक, बटन दबाया और हो गया. उसने गुस्सा किया तो मेरा बटन यहाँ दबा, मुझे उदास होना ही है. दिस वॉज ऑल मैकेनिकल, बट नाउ इट्स बिकम क्रिएटिव कि मेरे पास चॉइस है. वो हर्ट है, मैं स्टेबल भी रह सकती, मैं न्यूट्रल रह सकती, मैं और भी ज्यादा पॉजिटिव होकर कुछ और क्रिएटिव सोच सकती. लेकिन पहले तो कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, देयर वॉज जस्ट वन चॉइस. एंड तब हम कहते थे अटैचमेंट है तो हर्ट के साथ हर्ट होना नेचुरल है. ये नेचुरल था एंड वी टुक इट एज अ साइन ऑफ लव कि अगर वो दर्द में है और मुझे भी दर्द हो रहा है, इट इज अ साइन दैट हम बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं.
1: Somewhere we were actually taking love as attachment.
0: And we even say to each other, I can feel your pain. पेरेंट चाइल्ड के साथ है, बच्चे से कोई गलती हो गई, पेरेंट हर्ट हो गया, कहीं उसकी पेरेंटिंग स्किल पर यू नो क्वेश्चन मार्क उठ गया, तो वो अपने ही कॉम्प्लेक्सेस में इतना चले जाते हम कि हम बस चाहते हैं कि बच्चा किसी भी तरह ठीक हो जाए. बस वो जो मेरे ऊपर स्टिग्मा लगा है, दुनिया के सामने नहीं, मेरे लिए, अपने लिए, कि मेरी पेरेंटिंग पे जो स्टिग्मा लगा है वो ठीक हो जाना चाहिए, इसलिए हम उसको कहते हैं तुम ठीक हो जाओ. यू नो वी डोंट रियलाइज दिस, बट ये इसलिए है तुम ठीक हो जाओ. वी नॉट रेडी टू गिव इट टाइम टू अंडरस्टैंड वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसके पीछे क्या कॉम्प्लेक्स है, क्या दर्द है, क्या सेल्फ एस्टीम हर्ट हुई, कुछ नहीं, तुम ठीक हो जाओ. बस तुम ठीक हो जाओ, क्यों, क्योंकि जब तुम ठीक हो जाओगे
1: तो मैं फिर रीअश्योरेंस हो जाएगी कि
0: मैं ठीक हो जाऊंगा. सो यू नो देन आई एम नॉट प्लेइंग दैट पेरेंट रोल इन द वेरी राइट वे. और जैसे ही हम ये करना शुरू करेंगे, अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे, यहां बहुत ज्यादा क्लटर नहीं होगा, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली साइलेंट होता जाएगा. सारे आंसर्स, सारे सोल्यूशंस यहां पर है, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन, कि एक ट्यूटर है जो अंदर बैठा है, लेकिन अंदर की आवाज सुनने के लिए ये नॉइज को खत्म करना पड़ेगा. अभी क्या हो रहा है, इतनी नॉइज है, वो अंदर से आवाज देता भी है लेकिन हमें
1: आवाजों में फिर वो कंफ्यूजन, ये आवाज ठीक है, वो आवाज ठीक थी.
0: आप देखो कितनी बार जैसे जैसे हम इस जर्नी पर हैं तो अंदर से आवाज आती है, हमें कहते हैं मुझे अंदर से आवाज आई थी कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उस आवाज को क्या किया,
1: अनसुना.
0: मैंने अनसुना किया. क्यों अनसुना किया, क्योंकि कहीं मैंने सोचा कि अगर मैं उस आवाज की बात मानती हूं तो मैं वो करने से अपने आप को रोक दूंगी जिस पर मेरी खुशी डिपेंडेंट है. लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रग्स और विद स्मोकिंग, और आई शुडंट बी वॉचिंग 3 hours ऑफ टेलीविजन, आई डोंट हैव टाइम, बट आई एम स्टिल वॉचिंग. तो अंदर से ये छोटी छोटी बात है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेरी बिग वंस, कि छोटी सी आवाज अंदर से आएगी, मत देखो या ये मत लो, ये तुम्हारे लिए अभी इट्स नॉट गुड, लेकिन आई से गो अवे, मुझे खुशी चाहिए. यू नो, तो मैं उस आवाज को इसलिए इग्नोर कर देती हूँ
1: कि मुझे वो चाहिए,
0: कहीं वो आवाज मुझे मेरी खुशी से ही दूर लेके जा रही है, विदाउट रियलाइजिंग वो आवाज ही मुझे मेरी खुशी तक लेके जाने वाली है, मेरी आवाज.
1: वंस माय डॉटर आल्सो टोल्ड मी कि शी सेज मेरे को पता चल रहा है कि मैं टीवी देख के टाइम वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज कम एंड स्कोल्ड मी मॉम. आई सेड you know the relaxation is so much.
0: Yes, it is, but I'm not listening to myself, so I need someone else to come and say it to me. To kya hota jab usko bar bar daba diya jata to bhi andar hi wo dab jati hai, and then when it will come out wo ek emotional outburst ke roop mein aayegi. Hamari conscience jisko hum kehte, that keeps giving me the signals and it always gives me the right signal. Always. Now it's just up to me टू टेक दैट सिग्नल, इग्नोर करते गए. इट्स लाइक हमें एक बहुत अच्छा टीचर मिला है जो हमेशा हमें अच्छा सिखा रहा है, लेकिन मैं उस टीचर की आवाज को, उसकी विजडम को, क्योंकि सारी विजडम भरी हुई है मेरे जीवन में, मेरे लिए क्या सही है,
1: मेरे पास है,
0: मेरे पास आंसर है. आई नेवर नीड टू

0: and ask anyone else. Lekin
1: aur aajkal hum har cheez har chota decision bhi office ka decision bhi ghar ka decision bhi 10 logon se pooch ke kar rahe hote hain
0: because we are not listening. So wo tutor andar baitha hai uski baat ko sune aur jitna sunte jayenge you know ye teacher aisa hai ki hum uski baat ko jitna sunte jayenge ye hame wisdom aur bhi deta jayega
1: clarity aur
0: you know suppose aap mujhe koi achhi baat bata rahe ho मैं सुनती ही नहीं फिर आपने दूसरी बार बताया मैं सुनती नहीं चार बार बताओगे
1: आप नहीं सुनाते फिर
0: पांचवी बार आप मुझे बोलना ही बंद करोगे तो मैंने ही अपने अंदर जो थी एक इतनी अच्छी चीज उसको मैंने दबा दिया और अगर मैं बार बार आपकी बात सुनने लग जाऊं तो आप सोचोगे चलो मेरे कहने के अनुसार से ये कर रहे हैं तो आप और बताना शुरू करोगे और बताओगे इमेजिन माई लाइफ विल बिकम वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी ब्यूटिफुल
1: बहुत सुंदर तो आज जो हम इस प्रोसेस पे हैं कि हमें करना क्या है जिन बिलीफ सिस्टम्स को पकड़ कर हम अभी तक बैठे थे उन्हें छोड़ने के लिए हमें सबसे पहले तो लोगों को छोड़ना पड़ेगा लोगों की स्क्रिप्ट लिखनी छोड़नी पड़ेगी कि लेट बी एक तो लेट गो जो जैसा है उसे वैसा रहने दें उसके ऊपर चिंतन मत करते रहें कि उस वो ऐसा कर ले वो ऐसा कर दे मेरा टीचर ऐसे कर ले मेरा हस्बैंड ऐसे कर ले समवेयर वी नीड टू लेट बी वो जो जैसे हैं और दूसरी बात कि जहां हमने अपने आप को साइलेंट करके उस आवाज को सुनना शुरू कर दिया चाहे इम्प्लीमेंट अभी भी ना करें यू नो चाहे मैं तो कहती हूँ चाहे इम्प्लीमेंट ना करो सुन के उसको रजिस्टर तो कर ले एट टाइम
0: दबा ना दे
1: उसको रजिस्टर करना शुरू कर दे यस दिस इज व्हाट आई शुड बी डूइंग बट राइट नाउ आई डोंट फील लाइक डूइंग इट्स ओके बट नेक्स्ट टाइम आई विल लिसन टू यू यू नो सो यहां ये प्रोसेस अगर शुरू हो जाता है उसमें जैसे हमने कहा कि हर एक घंटे के बाद एक मिनट का साइलेंस ये बात की याद दिलाएगा मेरी आवाज मुझे अपने साथ सुनाता जाएगा तो ये छोटे छोटे जो प्रैक्टिस है वो हमें करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि फिर हम चाहेंगे कि आपका जो अनुभव है वो आप हमारे साथ शेयर करें तो कोई बात मन में आ रही है कोई सवाल है अभी भी है या इस प्रैक्टिस के दौरान आपको कोई ऑब्स्टिकल है आप हमें संपर्क कर सकते हैं या तो फोन पर या फिर ईमेल पर हमारे फोन नंबर है 01242667000 999 3445 9999 3446 9873666555 हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org तो सस्ती शिवानी आज की जो पूरी बातचीत रही बहुत क्लैरिटी से ये समझ में आ गया कि करना क्या है आप कितना करेंगे यह हमारे पर निर्भर करता है लेकिन ये डेफिनेट है कि हम करेंगे जरूर क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है सब कुछ करना थैंक यू सो मच ओम शांति और अब आपसे भी विदा लेते हैं लेकिन इसी बात के साथ कि ये जो हमें समझ में आ रही है बात लगता है कि पॉसिबल है तो लेट्स ट्राई इट आउट ना पहले भी तो हम इसी इन्हीं बातों को इम्प्लीमेंट करते आ रहे थे बदला जीवन आगे और भी बदलेगा हैप्पीनेस हमारी अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी फिलहाल आपसे विदा लेते हैं ओम शांति

0: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
2: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
3: रेडियो हांजी 1674।
4: You are listening Australia's
5: number one.
4: Radio Hanji.
5: Radio Hanji.
6: Radio Hanji 1674 में समा हो चुका। आज दी कहानी पढ़िए। आस करते हैं कि तुसी राजी खुशी हो गए, चढ़दी कला च हो गए। समा हो चुका आज दी कहानी दा। ढिल्लों साहब ने जदों दा धी दा व्याह तरिया उदों दी सेहत थोड़ी उत्ते थले रहन लग पई है। शुगर दे लैवल सैट नहीं आते। डॉक्टर कहिंदा स्ट्रैस ना लिया करो, परेशानी दे नाल चिंता दे नाल इह लैवल कंट्रोल च नहीं आ सकते। डॉक्टर दी धी दा विआह होवे तो उहनूं पता होवे, मैं चाहवां जां ना चाहवां चिंता किदां नहीं होगी। एक तो इन्ने सारे खर्चे, इन्ने सारे कामकार, सारे इंतजाम करने ने, नवें घर धी ने जाना, उस चीज़ की अलग तो चिंता। तो वड्डी चिंता इस चीज़ की भी कि वो धी जितों पलवी पासे रह के दिल घटना शुरू हो जाता। जिहड़ी मेरी माँ तो वध मेरा ख्याल रखती है। कई बार तो जदों जिहड़े हिसाब के नाल विचरती है, जिदा पिछों भज भज के चीज़ां फड़ाउंदी है, पापा तुसीं आ भुल गए, पापा तुसीं आ करना ही, पापा तुहाडा बिल रह गया तरन वाला, पापा तुहाडा परस घर भुल गया, पापा तुहाडा फोन मैं चार्ज ते ला दिता ही, अज पापा तुहाडी पसंद की सब्जी बनाई है। वो धी जिहड़ी चेहरा वेख के दस दें कि हुण पापा का चाह पीण नूं जी करन डिया, बिना क्या बड़ियां गल्लां समझदी है। उस धी तों विछोड़े की भी तो चिंता। इदां ही तो मेरी माँ भी मेरा ख्याल रखती हुंदी सी। ढिल्लों साहब पता नहीं किहड़ियां किहड़ियां सोचां दे विच डुबे रहिंदे। चलो खैर, यह सारा कुछ तो चलता रहना, तैयारियां भी करनियां पैनियां, धी भी तोरनी पैनी है, तो शरीर में लगियां इस उम्र बीमारियां इन्हां दे नाल भी निजटना पैना। सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा, जिन्हें जी दिते ने, जिन्हें कार्ज करन दे लई दिते ने, उन्हें आपे ही आप नेपरे चाढ़ते हैं।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: हां जी रेडियो।
5: फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सिंगिंग ए हम्द बारी ताला फॉर गॉड, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
4: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
5: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshy in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
6: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
7: Satyakal, मैं हूँ जी शेरगिल, से तुम सुन रहे हो Radio Hanji 1674 AM.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: जवाकां दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
3: नीरू
2: बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
4: फुलकारी उत्ते बेल बूटियां, मित्रां दे चादर ते पा दे मोरी। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गिप्पी गरेवाल, तुसीं सुन रहे हो हां जी रेडियो।

तेनू ओदे नाल मिलाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी, मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउन आया सी।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना, डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी, हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 2 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धि कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
1: JBCO Films लेके आए ने एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा,
2: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हालात च।
3: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
4: मैं उठो भी मुड़ के जत्थों कोई नहीं मुड़ के होगा।
1: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni।
3: हुन वेखना ना भुलियो 15 मई तो हाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच शेरा।

ब्रेक नहीं कर सकती गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम क्लियर है विजन मेरी यारों नी नो ज़ूम ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: पांडे जी, क्या तू साला लग पाए हो यार?
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चले आए,
0: और ये तीसरी दोस्त ही है ना?
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: ਚਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते।
5: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।